मिरिमे 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104.5 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 10 तारीख वह दिन है शुक्रवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 मिनट तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अश्युत बर्मन, ट्रांसमीटर पर उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गरे और सुक्षी शिकारिका, मनपा में उत्कोषक श्री थुप्तन टाशी।

तथा अन्य से कर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी घोषिका येशि पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का टॉन केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिट्टी न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: Madhya Pradesh with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. Pachad in Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 mm since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
1: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने

0: प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: तो 1 जून से लेकर 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0

से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने

0: ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति।

0: गांधी स्मृति। देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी। तब सर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास। लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन।
1: कवि ने कहा है और मैंने तो कहीं यहाँ पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत के बाहर जो हुआ है वो तो बगीचा के लिए कहा है।

Ele छोटा था तब सुना थे लेकिन मुंह याद रखा कि क्या खूबसूरत चीज है उसको मुंह जन्नत में मारा जन्नत ऐसे आता हूँ मेरी चीज से लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसी ऐसी शरीफ मुसलमान बन जाए शरीफ हिंदू बन शरीफ सिख सिख बनो सब वो सबके सब भाई भाई बन जाए तब तो मैं कहूंगा कि वही शेर जो है वो शेर सब दरवाजे पर लगाया जाए तो उसे भाई में लगेगा भी लगेगा लेकिन वहां यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए दिल साफ हो जाए दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा वो तो नहीं है उसमें से तो पाकिस्तान वो तो दूसरे साल हो जाता है लेकिन अगर वो बदल जाए और शक्ल बदले तो वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो यहाँ शेतर में रहता है खुदा भी रास्ता है ऐसा कर ले तो कह सकते हैं कि जन्नत बाहर नहीं पड़ा है जन्नत तो यहाँ है अरे लोगों आइए जन्नत में रहना है जन्नत में देखना है तो इस दरवाजा में प्रवेश करो इसी पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है ऐसे ही हम है पाकिस्तान में हमारे भाई है हम उनके भाई है वो हमारे भाई है हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो है रह जाए उसे रहा तो क्या न रहा तो क्या हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी अलग अलग रहे लेकिन दिल एक मिल गया हमारा तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे उससे उसको क्या आपको क्या पड़े मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान की देहात है तो उस 60,000 देहात की वो हुकूमत बनी है समान उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है उसको बड़ा अच्छा है उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा अच्छा होगा सरस होगा और तब तो से वो देहातों का काम तो भी देने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से ऐसी वो खूबसूरत चीज है तो मुझको तो कहते कि देखी घोष में पी लेता और कोई तो कहने के तो किसा बेवकूफ आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का क्यों वो आशा रखता है लेकिन मैं क्या करूं बना हूं इसे और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है पता नहीं था ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ आपको कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ मैं अखबारों को भी पढ़ता जाता नहीं था पढ़ता नहीं था अंग्रेजी मुझको कहाँ इतना आता था अंग्रेजी बड़ी मुसीबत से थोड़ा पढ़ता था और ऐसा गुजराती भरना जान लेता था वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सके उनको दिखाने का कैसे पड़ेगा ऐसा अनजान आदमी तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में वो राजकोट में नहीं काठियावाड़ में नहीं सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब एक बनकर रहे और एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं ये मेरा ख्वाब तो अगर लोग मुझको सुनाते हैं सब जगह से तार लेते हैं तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ तो इसलिए मैं मान लेता हूँ शायद वो ख्वाब स्वराज तो आया उनको नहीं कम आए उसको मैं स्वराज मानता नहीं हूँ लेकिन इसी जंगल में जो उस वक्त

एक जवानी है और जवानी भी संहति की, उसने ये ख्वाब मैंने देखा और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है? तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना, मरने के किनारे पर बैठा, लेकिन मेरा दिल नाचेगा और एक छोटा ये यहाँ लड़के लड़के है ना, इस तरह से ये बुरा नाचेगा। अच्छा हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया, हिंदू मुसलमान कोई आपस को लेते फिरते नहीं है और इस तरह से रहते हैं। हाँ आप लोग सब मदद करें और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने, मेरी आप क्या सुनना था, लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है तो बात तो सच्ची, वो कहता है बुरा मूर्ख है उसे क्या हुआ, तो उसकी बात है ऐसा करो, मुसलमान मान लो, हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे, हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में कायम रहे, अच्छे बने तो सब धर्म एक साथ चलते हैं, एक किसी कोई देखेगा नहीं, तो मुसलमान है तो पारसी है, शरीफ आदमी है, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा, और आप नाचेंगे नचा नहीं करता, वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा बना देगा और इसी दुनिया का बन गई है कि जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता है, और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं तो कहें कि हमको किसी से नहीं डरते, एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं डरते हैं। अरे देखो ये पहाड़ जैसा पठान है, सीखे उसे नहीं डरते हैं, मैं तो डर जाता हूँ, तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ, डर के लड़कियाँ अगर डरते हैं ईश्वर से ही दूसरे को तो कह सकते हैं, ऐसा मैं तो हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ।

श्रोता अभी आपने कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत गानी स्मृति सुना। आइए अब सुनते हैं गुलशन कुमार के आवाज में चंद देवभक्ति गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना में ही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आइए आज सुनते हैं असीम बिमला देवी, एके उषा रानी, पी चंद्र कुमार, एच तपिसाना देवी और के मेघा चंद्र की आवाजों में चनाधुनिक मणिपुरी गीत।

0: श्रोताओं, इस आधुनिक मणिपुरी गीत के साथ ही विभिन्नपन का कार्यक्रम प्रदेश संगीत अभी ही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:23 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आज आप सुनिए दोजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के छात्र सुशी छुमिलहामु से एक वार्ता। वार्ता का विषय है डर पर काबू पाना और आत्मविश्वासी बनना।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी छुमिलहामु दोजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग की 5वीं छात्र की छात्रा आज आप सभी के समक्ष डर पर विजय और आत्मविश्वासी बनना विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई भय होता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर या फिर अपने सपनों तक न पहुंच पाने का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने भी जीवन में कुछ बड़ा किया है उसने पहले अपने डर को हराया है। आज के आधुनिक समय में युवाओं के डर का रूप बदल चुका है। अब सिर्फ परीक्षा या नौकरी का डर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा न होना, दूसरों से तुलना, ऑनलाइन जजमेंट, सोशल मीडिया का प्रेशर और लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़े डर बन गए हैं। इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में हर कोई अपनी लाइफ का सिर्फ परफेक्ट हिस्सा दिखाते हैं, जिससे युवाओं को लगता है कि वे दूसरों से कम है। लेकिन असल आत्मविश्वास लाइक्स या फॉलोवर्स से नहीं बल्कि अपने आप पर विश्वास करने से आता है। डर पर विजय पाने का पहला कदम है डर को स्वीकार करना। बहादुर वही है जो डरता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। दूसरा कदम है छोटे छोटे कदम उठाना। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता लेकिन रोज के छोटे प्रयास हमें बड़ा बना देते हैं। जैसे कोई छात्र पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो उसे पहले 2 लोगों के सामने बोलना चाहिए, फिर धीरे धीरे एक बड़े समूह के सामने। तीसरा तरीका है नकारात्मक सोच को बदलना। मैं नहीं कर सकता आपको रोकता है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको आगे बढ़ाता है। चौथा तरीका है दूसरों से तुलना बंद करना, क्योंकि तुलना करने से केवल प्रेरणा नहीं कई बार निराशा और डर पैदा होता है। डर इंसान की यात्रा अलग होती है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और आपकी कहानी आपके हिसाब से खास है। पांचवा और सबसे जरूरी तरीका है असफलता को अंत नहीं अनुभव मानना। आज के समय में कई यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर या स्टार्टअप फाउंडर्स शुरू में असफल होते हैं। उनकी पहली वीडियो पर मुश्किल से कुछ ही व्यूज आते हैं लेकिन वे रुकते नहीं। असफलता से सीखकर जब वे आगे बढ़ते हैं तभी सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। सकारात्मक माहौल और सही लोगों का साथ भी आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यदि हम उन लोगों से घिरे रहते हैं जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं तो आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो हमारे हौसले बढ़ाए, हमारी कोशिश की कद्र करें और मुश्किल समय में हमारा साथ दे। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वह दूसरों से कम न रह जाए। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। अंत में डर हमें रोकता है लेकिन आत्मविश्वास हमें ऊपर उठाता है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, दूसरों से तुलना छोड़ देते हैं और असफलताओं को सीख की तरह स्वीकार

0: कर लेते हैं तब हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने डर के पार जाए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान और सफलता छिपी होती है। बस एक कदम भरोसे का उठाइए, बाकी रास्ता आत्मविश्वास खुद बना देगा। धन्यवाद।
1: श्रोता, मैं अपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोजी खंड गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के छात्रा छुमिला मुझसे एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था डर पर काबू पाना और आत्मविश्वासी बनना।
2: दादी, कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104 मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:36 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं, दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी के आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है कुमार ने तथा संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

गुरप्रीत सैनी के गीत पर श्रोता, अभी आपने फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से गीत सुना। इस गीत के गायक थे दर्शन रबल और रोचक कोहली। आइए सुनते कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म जब हेरे में सिजल से सुनिधि चौहान और शाहिद मलिक की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है इशाद कामिल ने तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ब्रह्मास्त्र से। इस गीत को बोल दिए है अमिताभ भट्टाचार्य ने तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

कुमार के गीत पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म कपूर सेन सन से। इस गीत को गाया है अर्को ने।

श्रोता अभी आपने फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता थे इशात कामिल तथा संगीत दिया था विशाल और शेखर ने। कार्यक्रम को यूं जारी रखते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म गोलमाल अगेन से अरमान मलिक की आवाज में। इस गीत के रचयिता है कुमार तथा संगीत दिया है अमल मलिक ने।

श्रोता, अभी आप हमें आना ले रहे हैं आकाशवाणी के तवांग केंद्र से मीरे में वेक्सु मीरे में 102.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजिली में।

अनविता दत्त के गीत पर श्रोता अभी अपने फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से शेखर रविजानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन के आवाजों में। इस गीत के रचयिता हैं अनविता दत्त तथा संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने कुमार के गीत पर फिल्म कबीर सिंह से तुलसी कुमार और अखिल सचदेव की आवाज में एक गीत सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम गीत, फिल्म हीरोबंदी से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत को बोल दिए है कौशल मुनीर ने तथा संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, इस आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन, राग है यमन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत। उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन, राग था यमन। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंचे। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। अरुणाचल

0: के बुनियादी ढांचे और विकास को बड़ी गति प्रदान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने CRIF 2026-27 के तहत राज्य के लिए 611 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत वाली 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पीलात एवं लोअर सियांग जिले के कोरा सर्कल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। प्रोफेसर राज ने अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय RGU के कुलपति के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक अरुणाचल प्रदेश में 44 भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। आज सुबह वेस्ट कामेंग जिले के रिक्टर पैमाने पर 2.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अरुणाचल प्रदेश की ट्वाइकोंडो एथलीट रूपा बायर ने 5वीं सीनियर ट्वाइकोंडो पुमसे नेशनल चैंपियनशिप 2026 में अंडर 30 रिकॉग्नाइज पुमसे कैटेगरी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। हवाई अड्डे के रनवे पर भी प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच इस वर्ष अपने खेले गए संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई इस यात्रा को आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम माना जा रहा है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास को बड़ी गति प्रदान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF 2026-27 के तहत राज्य के लिए 611 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत वाली 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

0: द्रव्य महानो ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए राज्य को निरंतर सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने ईस्ट सियांग जिले के बेलात सर्कल एवं लोअर सियांग जिले के कोरा सर्कल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। दल ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें केंद्र सरकार की सहायता से राहत एवं पुनर्वास का आश्वासन दिया। साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों को निजी संपत्ति के नुकसान के मुआवजे तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की बहाली के लिए लागत का आंकलन तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए। प्रोफेसर शिवराज ने अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीयू के कुलपति के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरजीयू का भविष्य टीम वर्क और साझा जिम्मेदारी पर ही निर्भर करता है। इसके बाद प्रोफेसर शिवराज ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने नवनियुक्त कुलपति को राज्य की समृद्ध जैव विविधता पर केंद्रित अनुसंधानों के बढ़ावा देने की सलाह जारी की। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक अरुणाचल प्रदेश में 44 भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। आज सुबह 7:03 पर वेस्ट कामेंग जिले के रिक्टर पैमाने में 2.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। विभाग ने बताया है कि 20 जून से अब तक तवांग जिले में 8, वेस्ट कामेंग में 5 और लोंगडिंग जिले में 1 भूकंप दर्ज किया गया है, जिनकी तीव्रता 2.3 से 3.9 के बीच रही है। बार बार आने वाले हल्के भूकंप इस बात को दर्शाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की ट्वाइकोंडो एथलीट रूपा बायर ने 5वीं सीनियर ट्वाइकोंडो पुमसे नेशनल चैंपियनशिप 2026 में अंडर 30 रिकॉग्नाइज्ड पुमसे कैटेगरी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेशनल चैंपियनशिप पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में आयोजित हुई थी, जहां बायर ने अपनी कैटेगरी में शीर्ष प्रदर्शन करते हुए अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ा खिताब जोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल के आखिर में कोरिया में होने वाले वर्ल्ड टाइकोंडो पुमसे चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले 2026 में उन्होंने मंगोलिया में हुई 9वीं एशियन टाइकोंडो पुमसे चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में यह उनका लगातार दूसरा पदक रहा, जिससे वह इस इवेंट में लगातार 2 बार पोडियम फिनिश हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि इस कदम से सरकारों को विकास और अन्य ध्यान केंद्रित करने हुए बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े।
0: फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एम्बापे 30 साल की उम्र में सबसे पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेल रहा है। यह पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi will shortly reach Auckland on a two-day visit to New Zealand on the third and last leg of the three-nation visit. Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant

0: तनुये ने चलना था गा ज्ञाकर ने न्यूजीलैंड जगह ने प्रयोग का चमो थो का ट्रेवल थुनलम नव चम दे मेनो तुम्रित ज्ञातिक रिंचे पंजुन ट्रेवल थुनलम तिन यक्स सुगु नंबर यक्स नानी ज्ञाकर उई नासिली दिन नंचन कुजब अमिशा सी दंग ज्ञाकर के से तिली सर्प का ज्ञाकर जगह का संजम रह का सुजब या सुखन सुजब मामी बानंग देव का सुंदी सोनंग निसुनी उसका ज्ञागर नासिलिदन लंचन कुजब अमिशासी करप नदंगा ज्ञागप का संसम रेगा ज्ञागप पिकक सुर मामी बानंग देमे मदंगो सुजब चिंद तंगो तंयुक छेजी नमु यसनानी ज्ञागर निं म्यानमार ज्ञागप नेक ब्रेगा संसम ब्रेगा म्यानमार ज्ञागप सी सुर संसम पायक्स देमे मदंगो चेजुक थोगा क्यन्दुम मुई दोजों जीवो तोंट्रा खेली चीते कुक छेजी निगुनोक निसुने पेट्रोल नुम्निंग केस लेदन लंचन कुछब हरिप सिंग पुई सी गलप नदंगा ग्यागर शुंग सी पेट्रोल नुम्तो का E85 निगु नुम जुंगुंग जेमे छेजी थी गोजुगु निंग उद छेजी सी पेट्रोल नुम चोसो इन्ने लीडर थी का Pedro Rup Num Kisho Che Rup Kili Reyuk Yimbunyas Nani E85 Num Lome No Grimato Shem Ka Baji Tome Motonyuk Yimbunyas Nani Nub Bengal Shoka BGP Tsobuka Raj Saba Dezok Wedemka By Election Yaduka Wedemka Shinganche Kyundum Misum Noknituni Ozo Kushab सुखेंदु शेखर राय सुष्मिता देव निंग प्रकाश चिक बरेक बनंग इंबोर ओजो वेदेम यायुक तवचरांचिच उल्लेख देर खेलिब्लिचे याइक इंबोर उज लंचिन सुमगा तांशुम न्याचर ब्रेचे कांग्रेस छोबगा थोर भाजपा छोबगा देगुंबोर ग्यागर सिंजन शेनपा कुजब सीबी राधाकृष्णन सी देश डगेजु यक्स टोंचिर शिमला का वंदेमा दरम यक्स कुमजीती उजु नमक नेतुने ओजो बेना सी सरदर वल्लभभाई पटेल पेनंग कोबुनिंग थुनु यक्स शिविनिंग थुनम चिकडिल रेयुतो का यिंबुन यक्स नानी दुनु ये ग्यागप का मामी सोले थोंगन पानंग कांबुशल न्यांगन कुदु शुनों नेसुनी ग्यागरन नमशिले कुंसी नेसुना थांगा देश गादे उदरखन शोका शुभ प्रांनेग रिंचे नमचर छोमक नी यक्सनानी गादे हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार निंग नूप बेंगल शोका निंग सिक्किम शोका ये नमचर छोमक नी यक्स न्यांदा थोनानी FIFA World Cup Football Semi-Dundur Quarter Final Shimpingipa Shinduka Deshnut Gagab Spain Ning Belgium Norway Ning England Argentina Ning Switzerland Banambreka Shinyukimbur Lanjana Uddebka Deshignizu Jethensho Shusubana Dus Lanjana Da Uzushuji Tundek Lerim Kunsuji Kozudur Desh Uz Lerima Tang Chindi Dumbak, Derek Tuguche, Tawang Halatin Rega, Kalawampo, Tsoganyanga, Shunjab Lange, Government Higher Secondary School Tawang, Government Down Secondary School Tawang Ning, Siraje, Adisha Lobdak, Kian Ning, Lobdu Nanshal, Siraje, Trazang, Kapje Kenji Buche, Kishi, Jeshi Tsedrasi, Durab Kaliti Muga, Ngatang Chuining Rikshung, Nyam Madasu, Gaye Sungjop Ning, Sinjong, Yakosukor, Kalap Nango, Danup Chize Lenganing, Garmakeli Chilang, Thor Chize Grosak, Puyo Chikmar, Dish Mutuyasanasa.
1: Juch Tukjadi Yanachi, Tebush, Nanda the Ong Yomye, Eachim da it. Legendary yang syarat nama senada. Oh, isme rang kosmik cewa cie, nama dia na ijik tebu, sampai top jumnya. Rang kosmik

मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और साथ ही 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको आज की शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी संध्या के 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम जन्मदिन में सुन पाएंगे ग्यांगोंग गोनपा के यानी येशी पेमा और साथियों द्वारा शेदन डेमछुक लामा छुपा का शेष भाग। शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता, इसमें श्रोता आज आप सुन पाएंगे एलडी स्कूलर्स होम के छात्र केजर सोमो कार्लो से अंग्रेजी में एक कविता। शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप सुन पाएंगे जुबिन गर्ग के आवास में फिल्म गैंगिंग स्टार से एक गीत, मनोरमा फिल्म से एक गीत, बॉम्बे टू बैंकॉक फिल्म से एक गीत, दम मारो दम फिल्म से एक गीत, लंदन ड्रीम्स फिल्म से एक गीत और फिल्म आशिया से एक गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने, इसमें आज आप सुन पाएंगे योद्धा फिल्म से बी परक के आवास में एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे आनंद ले पाएंगे। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्केन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 11 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना, इसमें कल आप सुन पाएंगे नरेंद्र चंचल के आवाज में चंद देवभक्ति गीत। कल दोपहर 3 विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, इसमें कल आप आनंद ले पाएंगे संगम लिंगी और ऑटोजी मेलू की आवाजों में चंद आधुनिक इदुमिस्मी गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत, इसमें कल आप आनंद ले पाएंगे फिल्म दिल धड़कने दो से सुनिधि चौहान, क्वीन फिल्म से अमित त्रिवेदी, लैला मजनू फिल्म से अतीब असलम और ज्योतिका टंगरी और फिल्म सिंग इज किंग से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसमें कल आप सुन पाएंगे दिल तो बच्चा है जी फिल्म से मोहित चौहान, हाईवे फिल्म

से एआर रहमान, दिल्ली 16 से मोहित चौहान, नौटंकी साला फिल्म से फलक शबीर, दोस्ताना फिल्म से विशाल ददलानी, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से विशाल मिश्रा, हंसिका परिक और सचिन जिगर, दोपति फिल्म से परंपरा तंदन, अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह और फिल्म स्त्री टू से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाजों में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग, शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 कार्यक्रम नमथन लेरिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम मनपा लोकगीत, शाम 6:00 कार्यक्रम लेरमसेरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदन लेरिम, इसके अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे। श्री थुपतन टैशी और साथियों द्वारा शेदन पर सोकी थवा। कल शाम 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, इसमें श्रोताओं का लाभ सुन पाएंगे खंडुडोव जांगमो जिला अस्पताल तवांग के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर छोटन सिरिंग के साथ हुए एक पेटवार्ता। कल शाम 7:32 पर कार्यक्रम सांझ और आवाज, इसमें कल आप सुन पाएंगे अलबेला फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाज में, और फिल्म कल होना हो से एक सांझ और उसी सांझ को सोनू निगम के आवाज में। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के टनगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने, रात्रि 8:00 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। कल रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने

0: के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland, Prime Minister Modi was received at the airport by the New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. During his visit, the two leaders are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between India and New Zealand. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced the diplomatic, economic and security ties between the two democratic giants. Prime Minister Modi has expressed gratitude to the government and people of Australia as well as Australian Prime Minister Anthony Albanese for their warm hospitality during his visit.

0: श्रोता, अभी आपने कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलिस कुलस होम के छात्र केजर थोमो कार्लोस से अंग्रेजी में एक कविता सुना। कविता का शीर्षक था सेव अर्थ सेव फ्यूचर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दान केंद्र है। समय शाम के 7:12 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। कार्यक्रम दर्पण में आज आप सुनिए जुबिन गर्ग के गाये चंद फिल्मी गीत। तो आए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म गैंगस्टर से जुबिन गर्ग के आवाज में। इस गीत को बोल दिए है साहिद कदरी ने तथा संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

श्रोताओं, अभी आपने जुबिनगर की आवाज में फिल्म बॉम्बे टू बैंकॉक से एक गीत सुना। इस गीत को रचा था मीरा अली हुसैन ने तथा संगीत दिया था रोनी सुरेश ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत भी सुनते हैं जुबिनगर की आवाज में, फिल्म दम मारो दम से। इस गीत को बोल दिए हैं जयदीप सैनी ने तथा संगीतकार है प्रीतम।

श्रोता, अभी आपने फिल्म लंदन ड्रीम से सुबिन गर्ग की आवाज में गीत सुना। इस गीत को रचा था प्रसून जोशी ने तथा संगीत दिया था शंकर एहसान लोई ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं सुबिन गर्ग की ही आवाज में फिल्म आशिया से। गीतकार है मीर अली खान तथा संगीत दिया है सलीम मर्चेंट और सुलेमान ने।

श्रोताओं, जुबिनगर के इस गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अभी पर समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी देर

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे, जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑकलैंड हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लैक्सन ने स्वयं श्री मोदी की अगवानी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को रनवे पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर सहित औपचारिक स्वागत प्रदान किया गया, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने नई दिल्ली में सीमा से लगे जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पलायन रोकने, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा सरकारी कल्याणकारी योजना का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और विकसित करने की बड़ी प्रगति प्रदान करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF 2026-27 के लिए राज्य के लिए 611.17 करोड़ रुपए की लागत वाले 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए राज्य को निरंतर सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व में सदस्य अंतर मंत्रालय केंद्रीय टनलें ईस्ट सियांग जिले के बेला सर्कल एवं लोअर सियांग जिले के कोरा सर्कल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। दल ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें केंद्र सरकार की सहायता से राहत एवं पुनर्वास का आश्वासन दिया। साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों को निजी संपत्ति के नुकसान के मुआवजे तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की बहाली के लिए लागत का आकलन तैयार करने के निर्देश भी जारी किए। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू ने याजाली के पोसा और निपको कॉलोनी में हाल ही में बादल फटने से उत्पन्न बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 25 लाख से ज्यादा की राहत सामग्री वितरित किए। किसी आपदा के समय छात्र संगठन द्वारा की गई ये

0: अब तक की सबसे बड़ी राहत पहलों में से एक है। राहत अभियान का नेतृत्व आपसू प्रेसिडेंट मेजर ताकू द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ जनरल सेक्रेटरी, कार्यकारी सदस्य और राज्य भर के जिला छात्र संघों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस अवसर पर आपसू अध्यक्ष ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि संगठन इस मुश्किल वक्त में उबरने के लिए उनके साथ हमेशा खड़ी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक अरुणाचल प्रदेश में 44 भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। आज सुबह 7:30 पर वेस्ट कामेंग जिले के रिक्टर पैमाने पर 2.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। विभाग ने बताया है कि 20 जून से अब तक तवांग जिले में 8, वेस्ट कामेंग में 5 और लोंगडिंग जिले में 1 भूकंप दर्ज किया गया है, जिनकी तीव्रता 2.3 से 3.9 के बीच रही। बार बार आने वाले ये हल्के भूकंप इस बात को दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने लोक भवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी परनायक से मुलाकात कर राज्य में चाय की खेती की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा है कि टी बोर्ड और राज्य सरकार के सीमावित प्रयासों से चाय उत्पादों को वित्तीय सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, मूल्य संवर्धन के अवसर, ब्रांडिंग पहल तथा व्यापक बाजार से जुड़ने में सहायता मिलेगी। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों तवांग, कुरुंग कुमे, पपुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग और लोंगडिंग के लिए येलो, साथ ही अन्य 4 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, ईस्ट सियांग और तिराप के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अरुणाचल प्रदेश की रूपा बायर ने पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में आयोजित 5वें सीनियर ट्वाइकोंडो पुमसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के अंदर 30 रिकॉग्नाइज्ड पुमसे श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस शानदार उपलब्धि के साथ उन्होंने कोरिया में आयोजित होने वाले 2026 विश्व ट्वाइकोंडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से रूपा बायर को बधाई देते हुए विश्व चैंपियनशिप के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय इंदु चुकू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन ओकलैंड टुडे ऑन द फाइनल लेग ऑफ हिज थ्री नेशन टूर, वेयर ही रिसीव्ड ए वार्म सेरेमोनियल वेलकम फ्रॉम न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन। द टू लीडर्स शेयर्ड ए वार्म embrace as Prime Minister Lukshan personally received Mr. Modi at the Auckland Airport. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception on the tarmac with representatives of the Indian and New Zealand Armed Forces in attendance. Union Home Minister Amit Shah has said that a secure border, a prosperous border region and a vigilant society together can ensure the country's security. Addressing a conference of superintendents of police from border districts in New Delhi yesterday, Mr. Shah said that under the Vibrant Villages program, efforts are being made to prevent migration, generate employment and ensure the 100% implementation of government welfare schemes. In a significant boost for Arunachal Pradesh's infrastructure and development journey, the Central Ministry of Road Transport and Highways approved 17 road projects worth ₹611.17 crore under the Central Road and Infrastructure Fund 2026-2027 for the state. The Chief Minister Pema Khandu thanked Prime Minister Narendra Modi for his continuous support. The Assam government has proposed an expenditure of over 1.56 lakh crore rupees in the budget estimates for the financial year 2026-2027, while targeting a fiscal deficit of 3% of the state's projected gross state domestic product. The first full budget of the 16th Assam Legislative Assembly was presented by Finance Minister Jayanta Malla Barua in the Assembly today. In the employment sector, the government has set a target of creating 2 lakh employment opportunities over the

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने में फिल्म योद्धा से पीपरक की आवाज में एक देशभक्ति गीत सुना। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ और 104 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में। आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। यादों की बात फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को बोल दिए हैं मशरूर सुल्तानपुरी ने तथा संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने। गीत की फरमाइश की है पद्मटोकी स्नापानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और रजेंद्र जी शाह ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है ददरंगी छत्तीसगढ़ से हिरमणि वर्मा, परसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखीलाल वर्मा ने। इनकी फरमाइश का गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार आसाद भोपाली तथा संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर आए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राजमहल से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है मजनू कातिला दिल्ली से, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सातना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं, तू चोर में सिपाही फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन ने। इस गीत की फरमाइश की है रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्या, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने।

श्रोताएं आप सुनते हैं कार्यक्रम एंटी फरमाइश का गीत फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। इस गीत को बोल दिए है मुकुल दत्त ने तथा संगीत से सवार है आर डी बर्मन ने। गीत की फरमाइश की है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से।

महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने।

श्रोताओं, अभी आप आना ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के बस फरमाइश पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914-908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारे यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किल रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 9 रात्रि 9 बजे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य सेमीफाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संयुक्त रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स मैदान में जारी।

0: तो आज सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं टेनिस के साथ, जहां साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम खेला जा रहा है, यानी कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, और अलेक्जेंडर जेरेव इसके पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराया। अब से कुछ देर में एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। नोवाक जोकोविच इससे पहले 10 बार पुरुष सिंगल्स का फाइनल खेल चुके हैं, जिसमें से 7 बार खिताब उठाने में सफल रहे हैं।
1: मार्सिलो अरेवालो और जेलेना ऑस्टापेंको की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 56 मिनट के रोमांचक मैच में इस ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने स्टॉर्म हंटर और मार्क पॉलमैंस की जोड़ी को 4-6, 7-5, 6-2 से हराया। इसके साथ ही दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अपना पहला मिक्स डबल्स का मेजर और पहला विंबलडन खिताब अपने नाम किया। वहीं कैरोलिना मखोवा और लिंडा नोस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में चेक गणराज्य की कैरोलिना

0: ने अमेरिका के कोको गॉफ को 6-2, 1-6, 7-6 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक को 6-4, 6-4 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ये था कल के मैचों का हाल, लेकिन बात करते हैं अभी खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबलों की, जहां ज़ेवरेव ने पहले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष। सबसे पहले ये बताइए, रोमांचक मुकाबला रहा होगा, क्योंकि जब भी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव की बात होती है फ्रेंच ओपन का वो फाइनल याद आता है। ये खिलाड़ी डरता नहीं है, डरता है और मुकाबला करता है।
2: जी हाँ शक्ति, लगातार अपने विकट परिस्थितियों के बावजूद अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पहले खिलाड़ी बन गए हैं विंबलडन 2026 में अपनी जगह बनाने वाले। उन्होंने आर्थर फेरी को इस मुकाबले में हराया। जो पहला सेट रहा वो बहुत ही कांटे की टक्कर का रहा। पहले मुकाबला 6-6 की बराबरी से था और लास्ट में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने उनको छकाते हुए एक बेहतरीन तरीके से जीत को मुकम्मल किया। वहीं दूसरे और तीसरे सेट में आर्थर फेरी कहीं आसपास भी नजर नहीं आए और ज़्वेरेव ने जो है बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला जीता। लेकिन आर्थर फेरी जो एक 23 वर्षीय खिलाड़ी, उन्होंने इससे पहले हुए मुकाबले में फेबियानो

0: हेडी को इस मुकाबले में हराया। जो पहला सेट रहा वो बहुत ही कांटे की टक्कर का रहा, पहले मुकाबला 6-6 की बराबरी से था और लास्ट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने उनको छकाते हुए एक बेहतरीन तरीके से जीत को मुकम्मल किया। वहीं दूसरे और तीसरे सेट में आर्थर फेरी कहीं आसपास भी नजर नहीं आए और ज्वेरेव ने जो है और बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला जीता। लेकिन आर्थर फेरी जो एक 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने इससे पहले हुए मुकाबले में फ्लेवियो कोबोली को हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर किया था, क्योंकि जो आर्थर फेरी की रैंक है वो 114वीं रैंक है और उन्होंने 90 नंबर के खिलाड़ी को हराया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और एक वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
1: जी बिल्कुल, तो ज़ेवरेव ने अपना टिकट पक्का कर लिया है, लेकिन दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। एक तरफ युवा जोश से भरपूर यानिक है और दूसरी तरफ नोवाक, जिनकी नजर बिल्कुल स्पष्ट है अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए।
0: जी हाँ, जैसा आपने बताया कि वो अपने आठवें टाइटल के लिए जो है बहुत ही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ये उनका 11वां फाइनल होगा अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं, लेकिन यानिक सिनर की स्पीड के आगे जोकोविच कई बार परास्त हो चुके हैं, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जोकोविच अपने खेल में बदलाव करके एक अपने जो दौड़ है उसको सही जगह पर जाके खत्म करेंगे।
1: जी बिल्कुल, देखना होगा इसमें से कौन खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाता है आज की रात। और अब रुक करते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप का, जहां क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं और कल पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और आज रात 12 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होना है।
2: फीफा विश्व कप 2026 को फ्रांस के रूप में अपना पहला सेमीफाइनलिस्ट मिल गया है। बॉस्टन स्टेडियम में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेल के गोल की बदौलत सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया, हालांकि लगातार दोनों तरफ से हो रहे आक्रमण के बाद भी मैच के शुरुआती 45 मिनट गोल रहित रहे। इसके बाद दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपना अटैक और तेज किया, टीम को पहली सफलता मैच के 60वें मिनट में कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने दिलाई, जिन्होंने बेहतरीन कर्लिंग शॉट लगाते हुए फ्रांस को 1-0 से आगे कर दिया। ये इस विश्व कप में उनका 8वां गोल था। इसके ठीक 6 मिनट बाद ही उस्मान डेम्बेल ने फ्रांस की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। एम्बाप्पे के शानदार पास का फायदा उठाते हुए डेम्बेल ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और फ्रांस की जीत पक्की कर दी। इसके बाद बचे हुए समय में फ्रांस ने नियंत्रण से खेल को आगे बढ़ाया और को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
3: 20 वर्ल्ड कप गोल्स फॉर किलियन एम्बाप्पे। उस्मान डेम्बेले हैज हिट द बॉटम कॉर्नर एंड फ्रांस आर हेडिंग फॉर द फाइनल फोर। अ गोल ऑफ प्रिसिजन एंड सर्टेनिटी। फ्रांस मार्शल
2: इससे पहले टीम वर्ष 2018 में चैंपियन बनी थी और 2022 में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष, यहाँ अब वो दौर आ चुका है फीफा का जहाँ टीमें अपने खिताब से महज 2-3 कदम दूर हैं, लेकिन उनको पता है कि ये सबसे कठिन कदम है। आज मुकाबला होना है स्पेन का बेल्जियम से, किसका पलड़ा भारी है?
0: देखिए, पलड़ा भारी अगर मैं बताना चाहूं तो दोनों ही टीमों ने इस विश्व कप में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी हैं। स्पेन ने एक ड्रॉ खेला था केप वर्डे के साथ, उसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, उर्गवे हो, ऑस्ट्रिया हो या पुर्तगाल हो, किसी भी टीम के सामने स्पेन जो है बिल्कुल पीछे नहीं हटी और उन्होंने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। वहीं बेल्जियम जो है उन्होंने भी अपना पहला मुकाबला इजिप्ट से ड्रॉ खेला था, उसके बाद उन्होंने एक मुकाबला ईरान से ड्रॉ खेला और 3 मुकाबले जीत कर वो यहां तक पहुंचे हैं। मानसिक दबाव जरूर बेल्जियम पर होगा, क्योंकि स्पेन एक बार विश्व विजेता रह चुके हैं, जबकि बेल्जियम ने अभी तक कोई एक भी बार अभी तक खिताब नहीं जीता और फाइनल भी नहीं खेला है।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुकाव जो है मैच का स्पेन की तरफ होगा, लेकिन क्योंकि क्वार्टर फाइनल है तो दर्शकों को एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। खेल न सिर्फ एक मंच है जोश जज्बे और जुनून से दुनिया जीतने का, बल्कि खेलों के अंदर क्षमता है सीमाओं की दीवारें तोड़कर संबंधों को नई मजबूती देने की। ऐसा ही किरदार अदा करता है क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
4: Thank you.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन आज प्रसिद्ध मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG पहुंचे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने संयुक्त

0: रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं।
1: एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए खुशी की बात है।
1: स्पोर्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयासरत हैं, जबकि ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा।
1: 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
1: मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है।
0: कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम साथ खेले और हम साथ जीते। स्पोर्ट्स कैन के लिए नेहा गोस्वामी।
2: हम साथ खेलते हैं और साथ जीतते हैं, ऐसे कुछ संबंध हैं भारत और न्यूजीलैंड के, जहां पे क्रिकेट की जगह ये किरदार अदा करता है हॉकी। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: और अब चलते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान की तरफ, जहां पर एक नया कीर्तिमान और इतिहास लिखा जा रहा है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड और भारत के बीच एक मुकाबला टेस्ट मैच यहां पर खेला जा रहा है और एक बहुत लंबे इंतजार के बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 218 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पहली बार किसी महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। और इंग्लैंड में ही इंग्लैंड ने भारत को चौथे T20 मुकाबले में 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर

0: लिए कल ब्रिस्टल में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर के 49 गेंदों पर 80 रन का अहम योगदान था। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने दो दो विकेट निकाले। 159 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने फिलिप सॉल्ट और हैरी ब्रूक की अटूट शतकीय साझेदारी की बदौलत 13 ओवर और 5 गेंद में ही हासिल कर लिया एक विकेट खोकर के। और इसके साथ ही मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की यह श्रृंखला जो है 3-0 से अपने नाम कर ली है, और यह पहला मौका है जब इंग्लैंड ने भारत के साथ 2 या उससे अधिक मैचों की कोई श्रृंखला T20 श्रृंखला जीती है। और पहला मैच इस श्रृंखला का जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था, और अंतिम मुकाबला श्रृंखला का साउथहैम्पटन में कल खेला जाना है, जहां भारत की उम्मीदें होंगी कि अंतिम मुकाबले को जीत करके एक अच्छी शुरुआत दी जाए अपने T20 श्रृंखला की, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खरीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में तैनात किया गया है। इशिता चौधरी, सुशीला चानू और ज्योति शिल्पी डबास, निकी प्रधान, साक्षी राणा, सलीमा टेटे, नेहा दीपिका सुरंग को टीम में मौका दिया गया है, जबकि बलजीत कौर और ऋषिका भी टीम का हिस्सा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है, और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों

0: ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और

0: भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव

0: ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.